दुनिया झोल है। ए जी हम न कहते थे कि दुनिया झोल है, और तुम समझते थे कि बेटा गोल है। समझे मामा, कहता हूँ ताहूँ सच के झूठ की आदत नहीं मुझे, कहता हूँ सच के झूठ की आदत नहीं मुझे, मैं जाने मन किसी से अदावत नहीं मुझे, मैं जाने मन किसी से अदावत नहीं मुझे, कहता हूँ सच के झूठ की आदत नहीं मुझे, कहता हूँ सच के झूठ की आदत नहीं मुझे, मैं जाने मन किसी से अदावत नहीं मुझे, मैं जाने मन किसी से अदावत नहीं मुझे।

0: क्या?
1: अरे सुनो तो मामा, अरे अच्छे बुरे को देख के, अरे कहता हूँ साफ बात, अरे दिन हो तो दिन कहूंगा, अगर रात हो तो रात।
0: अरे जूते का
2: क्या मुंह काला?
1: अरे नहीं सुनो तो मामा, अरे जूते का साथ देने की आदत नहीं मुझे, जूते का साथ देने की आदत नहीं मुझे, ऐ जाने मन की चीजें अदावत नहीं मुझे, ऐ जाने मन की चीजें।

0: तो मैं तो नहीं हूँ पर आप हैं।
1: अब छोड़िए भी पीछा के फुर्सत नहीं मुझे, अब छोड़िए भी पीछा के फुर्सत नहीं मुझे, ऐ जाने मन की भी से अदावत नहीं मुझे, ऐ जाने मन की भी से अदावत नहीं मुझे,
0: कहता हूँ सच के झूठ की कहता हूँ
1: सच के झूठ की आदत नहीं मुझे, कहता हूँ सच के झूठ की आदत नहीं मुझे, ऐ जाने मन की भी से अदावत नहीं मुझे, ऐ जाने मन की भी से अदावत नहीं मुझे।
0: दुनिया झोल है ए जी, हम न कहते थे कि दुनिया झोल है, और तुम समझते थे कि बेटा गोल है। समझे मामा, कहता हूँ कहूँ सच के झूठ की आदत नहीं मुझे, कहता हूँ सच के झूठ की आदत नहीं मुझे।

झूठ की आदत नहीं मुझे, कहता हूँ सच के झूठ की आदत नहीं मुझे, मैं जाने मन की सीधे अदावत नहीं मुझे, मैं जाने मन की सीधे अदावत नहीं मुझे।

0: बात क्या?
1: अरे सुनो तो मामा, अरे अच्छे बुरे को देख के, अरे कहता हूँ साफ बात, अरे दिन हो तो दिन कहूंगा, अगर रात हो तो रात।
0: अरे जूते का
2: क्या मुंह काला?
0: अरे नहीं सुनो तो मामा, अरे जूते का साथ देने की आदत नहीं मुझे, जूते का साथ देने की आदत नहीं मुझे, ऐ जाने मन की चीजें अदावत नहीं मुझे, ऐ जाने मन की चीजें।

0: तो मैं तो नहीं हूँ पर आप हैं।
1: अब छोड़िए भी पीछा के फुर्सत नहीं मुझे, अब छोड़िए भी पीछा के फुर्सत नहीं मुझे, ऐ जाने मन की भी से अदावत नहीं मुझे, ऐ जाने मन की भी से अदावत नहीं मुझे।
0: कहता हूँ सच से झूठ की, कहता हूँ सच के झूठ की, कहता हूँ वो कहता हूँ वो कहता हूँ वो कहता हूँ सच के झूठ की आदत नहीं मुझे,
1: कहता हूँ सच के झूठ की आदत नहीं मुझे, है जाने मन की भी से अदावत नहीं मुझे, है जाने मन की भी से अदावत नहीं मुझे।
0: झोल है ए जी हम न कहते थे कि दुनिया झोल है, और तुम समझते थे कि बेटा गोल है। समझे मामा। कहता हूँ कहूँ सच के झूठ की आदत नहीं मुझे, कहता हूँ सच के झूठ की आदत नहीं मुझे, ऐ जाने मन की से अदावत नहीं मुझे, ऐ जाने मन की से अदावत नहीं मुझे, कहता हूँ सच के झूठ की आदत नहीं मुझे, कहता हूँ सच के झूठ की आदत नहीं मुझे, ऐ जाने मन की से अदावत नहीं मुझे, ऐ जाने मन की से अदावत नहीं।

0: तुझे अच्छे बुरे को देख के कहता हूँ साफ बात।
1: क्या?
0: अरे सुनो तो मामा, अरे अच्छे बुरे को देख के अरे कहता हूँ साफ बात। अरे दिन हो तो दिन कहूंगा, अगर रात हो तो रात। अरे जूते का
1: क्या मुंह काला?
0: अरे नहीं सुनो तो मामा, अरे जूते का साथ देने की आदत नहीं मुझे, जूते का साथ देने की आदत नहीं मुझे। ऐ जाने मन की अदावत नहीं मुझे, ऐ जाने मन की

0: देखो मैं तो नहीं हूँ पर आप हैं। अब छोड़िए भी पीछा के फुर्सत नहीं मुझे, अब छोड़िए भी पीछा के फुर्सत नहीं मुझे। ऐ जाने मन की भी से अदावत नहीं मुझे, ऐ जाने मन की भी से अदावत नहीं मुझे। कहता हूँ सच से झूठ की, कहता हूँ सच के झूठ की, कहता हूँ वो कहता हूँ वो कहता हूँ वो कहता हूँ सच के झूठ की आदत नहीं मुझे। कहता हूँ सच के झूठ की आदत नहीं मुझे। है जाने मन की भी से अदावत नहीं मुझे, है जाने मन की भी से अदावत नहीं मुझे।
1: ना झोल है ए जी, हम न कहते थे कि दुनिया झोल है, और तुम समझते थे कि बेटा गोल है। समझे मामा। कहता हूँ कहूँ सच के झूठ की आदत नहीं मुझे, कहता हूँ सच के झूठ की आदत नहीं मुझे। ऐ जाने मन की भी से अदावत नहीं मुझे, ऐ जाने मन की भी से अदावत नहीं मुझे। कहता हूँ सच के झूठ की आदत नहीं मुझे, कहता हूँ सच के झूठ की आदत नहीं मुझे। ऐ जाने मन की भी से अदावत नहीं मुझे, ऐ जाने मन की भी से अदावत नहीं मुझे।

0: क्या?
1: अरे सुनो तो मामा, अरे अच्छे बुरे को देख के, अरे कहता हूँ साफ बात, अरे दिन हो तो दिन कहूंगा, अगर रात हो तो रात।
0: अरे जूते का
1: क्या मुंह काला?
0: अरे नहीं सुनो तो मामा, अरे जूते का साथ देने की आदत नहीं मुझे, जूते का साथ देने की आदत नहीं मुझे, ऐ जाने मन की अदावत नहीं मुझे, ऐ जाने मन की।

देखो मैं तो नहीं हूँ पर आप हैं। अब छोड़िए भी पीछा के फुर्सत नहीं मुझे, अब छोड़िए भी पीछा के फुर्सत नहीं मुझे। ऐ जाने मन की भी से अदावत नहीं मुझे, ऐ जाने मन की भी से अदावत नहीं मुझे। कहता हूँ सच से झूठ की, कहता हूँ सच के झूठ की, कहता हूँ वो कहता हूँ वो कहता हूँ वो कहता हूँ सच के झूठ की आदत नहीं मुझे, कहता हूँ सच के झूठ की आदत नहीं मुझे। ऐ जाने मन की भी से अदावत नहीं मुझे, ऐ जाने मन की भी से अदावत नहीं।

0: बुझा नगद दे इन चोलों को शासन के अभिमानी स्वर्ग सिधारी वो वीरात्मा देकर ये संदेश जान सभी को प्यारी है पर जान से प्यारा देश
1: धन्य धन्य बुंदेलखंड है धन्य
0: हमर है।

0: बुझा न सकते इन चोलों को शासन के अभिमानी स्वर्ग सिधारी वो वीर आत्मा देकर ये संदेश जान सभी को प्यारी है पर जान से प्यारा देश
1: धन्य धन्य बुंदेलखंड है
0: अमर है

0: संदेश। जान सभी को प्यारी है पर जान से प्यारा देश।
1: धन्य धन्य बुंदेलखंड है।

0: संदेश, जान सभी को प्यारी है पर जान से प्यारा देश।
1: धन्य धन्य बुंदेलखंड है, धन्य हिंदुस्तान,
0: अमर है।

0: दिल की कहानी कैसे कहूँ मैं कैसे कहूँ, मेरे सपनों की सुंदर रानी, दिल की कहानी कैसे कहूँ मैं कैसे कहूँ।
1: मेरी तुझसे प्रीत पुरानी, बहुत पुरानी, कैसे कहूँ मैं कैसे कहूँ। मेरी तुझसे प्रीत पुरानी, बहुत पुरानी, कैसे कहूँ मैं कैसे कहूँ।
0: चंदा की चांदनी हो तारों दरिया पे हूँ, चंदा की चांदनी हो तारों।

0: तीन दिल की कहानी कैसे कहूँ मैं कैसे कहूँ मेरे सपनों की सुंदर रानी दिल की कहानी कैसे कहूँ मैं कैसे कहूँ
1: मेरी तुझसे प्रीत पुरानी बहुत पुरानी कैसे कहूँ मैं कैसे कहूँ मेरी तुझसे प्रीत पुरानी बहुत पुरानी कैसे कहूँ मैं कैसे कहूँ
0: चंदा की चांदनी हो।

0: फिर मिल जुलाए हम, फिर मिल जुलाए हम,
1: प्यार भरे गीत गाए, प्यार भरे गीत गाए, खुशियाँ मनाए भाजी, खुशियाँ मनाए हम।